विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: नया नेपाल को नया आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: तुम्हारा मेरा मिलना लिखा तो होगा कहीं,

महांकाली, भगवान बुद्ध, किरातेश्वर महादेव, महारुद्र, भीम रणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन संपूर्ण भक्तजन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।